0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे की तवानाई तनसीबात पर हमले रोकने पर इत्तेफाक किया है। ट्रंप ने इतवार को सोशल मीडिया पर लिखा, फौरी तौर पर मुअसर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में दोनों फरीकों ने तवानाई की जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है, इसकी खिलाफ वर्जी ना की जाए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमरीकी मीडिया को बताया कि ये ऐलान उनके लिए खबर है। इतवार को एक वीडियो पैगाम में जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन रूसी तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले करने से बाज रहने के लिए तैयार है और हम रूस की तरफ से इसी चीज के लिए तैयार होने पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि तवानाई की जंग बंदी हकीकत बन जाए। जेलेंस्की ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से यूक्रेनी फजा मुसलसल रूसी ड्रोन्स की जद में रही है और ये कि खारकीफ में तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ है। ट्रंप यूक्रेन से रूस में ऑयल रिफाइनरियों पर हमले रोकने के लिए कह रहे हैं। वो कहते हैं कि इस तरह के हमलों से डीजल की शदीद किल्लत हो जाएगी। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी शुरू होने के 1 साल बाद भी गजा में इसराइली हमले जारी हैं। फलस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हफ्ते की शाम इसराइली ड्रोन हमले में एक शख्स हलाक और इतवार को इसराइली फायरिंग में एक हामिला खातून समेत 8 दीगर जख्मी हो गए। 2 साल की लड़ाई के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कयादत में एक अमन मंसूबे ने जंगबंदी का मुआहदा तश्कील दिया जो गुज़श्ता साल 10 अक्टूबर को नाफिज हुआ। तहम इसराइली फौज वक्फे वक्फे से हमले करती रहती है और ये दावा करती है कि हमास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी तंजीम दोबारा मुनज़म करने की कोशिश कर रही है। गजा के सेहत हुकाम ने इतवार को ऐलान किया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7 अफराद हलाक हुए हैं, जिससे जंग बंदी शुरू होने के बाद से अब तक हलाक शुदगान की मजमुई तादाद 1488 हो गई है। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरीन में 450 से ज्यादा खवातीन और बच्चे थे। अक्वामुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने एक बयान में कहा कि जंगबंदी से कुछ राहत मिली है, लेकिन अभी तक तहफ्फुज़ या मुनासिब इंसानी इमदाद नहीं मिली। उन्होंने तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो अमन मंसूबे पर पेशरफ्त करें। अमन मंसूबे के दूसरे मरहले में हमास को गैर मुसल्ला करने और गजा से इसराइली फौजियों के इनखला का मुतालबा किया गया है। तहम इन इकदाम पर दोनों फरीकों का मौकफ मुतसाद है, जिसकी वजह से पेशरफ्त का अंदाजा लगाना मुश्किल है। नेपाल में अचानक आए एक और बड़े सैलाब से 5 अफराद लापता हो गए हैं। नेपाली फौज मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव की कार्रवाइयां कर रही है। फौज का कहना है कि इतवार के रोज वस्ती जिले गोरखा में मट्टी का तोदा गिरने के बाद मट्टी और रेत ने एक दरिया का बहाव रोक दिया। एसोसिएटेड प्रेस की फुटेज में देखा जा सकता है कि दरिया का कीचड़ आलूद पानी पहाड़ों से घिरी एक वादी का रुख कर रहा है, जिसकी वजह से करीबी रिहायशियों को बुलंद मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा है। नेपाली हुकाम दरिया के किनारे रहने वालों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कह रहे हैं। मकामी जराए इब्लाग का कहना है कि तकरीबन 40 मकानात और कई पुल बह गए और पानी से बिजली बनाने वाली एक तनसीब को नुकसान पहुंचा है। फौज का कहना है कि उसके दस्तों ने अब तक 40 से ज्यादा अफराद को बचा लिया है।
1: अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। जापान के वजीर ममलिकत बराए दिफा का कहना है कि शुमाली कोरिया ने पीर की सुबह कम अज कम 2 बैलिस्टिक मिजाइल दागे। उन्होंने बताया कि शुमाली कोरिया ने अपने अंदरूनी इलाके से शुमाल मशरक और मशरक की तरफ मिजाइल दागे हैं। बावर किया जाता है कि वो मुल्क के मशरकी साहिल और बहरे जापान के करीबी पानियों में गिरे। सऊदी अरब में हुक्काम का कहना है कि सऊदी दारुलहुकूमत रियाज के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर 2 दिनों में होने वाले दूसरे हमले में एक शख्स हलाक और 11 जख्मी हो गए हैं। यमन में हूसी बागियों का कहना है कि इस हमले के पीछे उनका हाथ है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और वीडियोज के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 13 अक्टूबर मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। इस वर्ष की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नवी पिल्लई ने द हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का दौरा कर अमरीकी प्रतिबंधों के तहत कठिनाइयों का सामना कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया है। पिल्लई 2003 से लेकर 2008 तक आईसीसी में न्यायाधीश रह चुकी हैं। सोमवार को अपने इस दौरे में उन्होंने आईसीसी अध्यक्ष अकाने तोमो को और कर्मचारियों से मुलाकात की। पिल्लई ने आईसीसी की भूमिका के महत्व पर बल देते हुए कहा कि उनकी करुणा और साहस ये सुनिश्चित करते रहेंगे कि अपराधी दंड से बच ना पाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि उसने अकाने को निशाना बनाने के बाद आईसीसी पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अकाने ने पिल्लई को बधाई देते हुए कहा, ये इस बात की अहम स्वीकारोक्ति है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय स्थायी शांति की आधारशिला के रूप में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिल्लई ने शनिवार को एक कार्यक्रम में आईसीसी से जुड़े हालातों पर चिंता व्यक्त की थी। अमेरिका का नाम लिए बिना उन्होंने कहा था कि एक देश ने न्यायाधीशों के न्यायिक आदेशों को लेकर उन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है जो अभूतपूर्व और अस्वीकार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच हुए ऊर्जा संघर्ष विराम समझौते का दोनों पक्षों की ओर से उल्लंघन हुआ है। ट्रंप ने इससे पहले इस समझौते की घोषणा की थी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को समझौता करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस बारे में बात करने पर। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समझौता करना चाहते हैं और हमें जेलेंस्की को उनके साथ समझौता करने के लिए राजी करना होगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स ने सोमवार को कहा कि ट्रंप की संघर्ष विराम घोषणा के बावजूद रूस यूक्रेन की नागरिक ऊर्जा अवसंरचना पर लगातार भीषण हमले कर रहा है। उन्होंने कहा, रूस स्पष्ट रूप से शांतिपूर्ण प्रस्तावों या मौजूदा वार्ता सुझावों पर प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस उसकी ऊर्जा अवसंरचना पर लगातार हमले कर रहा है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच ऊर्जा संघर्ष विराम की घोषणा की है। ट्रंप की घोषणा के अगले दिन सोमवार को जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अकेले उसी दिन रूस ने यूक्रेन में 6 ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया। जेलेंस्की ने आगे लिखा कि अगर देश संघर्ष समाप्त करने के बारे में गंभीर है तो उन्हें रूस पर अधिक दबाव डालने की आवश्यकता है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि यूक्रेन में नया राष्ट्रपति चुनने का समय आ गया है। इसके बारे में जेलेंस्की ने रविवार को एबीसी न्यूज से कहा कि अगर रूस 60 दिनों के पूर्ण संघर्ष विराम पर सहमत हो जाता है तो यूक्रेन उस दौरान चुनाव करवा सकता है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। यमन में सरकार विरोधी हूथी गुट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी है कि गुट के खिलाफ सऊदी अरब के सैन्य अभियान में अगर अमरीका शामिल होता है तो तुरंत कड़ा जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूथी गुट के हमलों के बाद ये चेतावनी जारी की गई है। सप्ताह अंत में हुए इन हमलों में 14 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी की खबर के अनुसार सऊदी अधिकारियों ने नुकसान के कारण हवाई अड्डे को अब 17 अक्टूबर तक बंद करने का फैसला लिया है। सोमवार को यमन की अंतरिम सरकार का समर्थन करने वाले सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने घोषणा की कि रियाद की ओर दागी गई हूथी गुट की एक मिसाइल को मार गिराया गया। पत्रकारों ने शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या अमरीका हूथी विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के सैन्य अभियान में शामिल होगा, तो उन्होंने जवाब दिया, हम शायद ऐसा करें, हम इस पर विचार करेंगे। जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी NEC ने एक मानव रहित विभाग बनाया है जो पूरी तरह AI से संचालित है।

0: उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि एआई का प्रबंधन में सहायता के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है। विभाग के प्रमुख से लेकर कर्मचारियों तक सभी पदों पर 39 एआई एजेंट काम करते हैं। एआई एजेंट्स को उनकी भूमिका के आधार पर नाम दिए गए हैं। एआई कर्मचारी रिपोर्ट तैयार करते हैं और जानकारी इकट्ठा करके अंतिम निर्णय लेने वालों की सहायता करते हैं। वे वित्तीय विश्लेषण के लिए मासिक बिक्री पर भी नजर रखते हैं। ग्राहकों के पिछले व्यावसायिक लेन देन के आधार पर सिस्टम अपडेट करने की टाइमिंग का अनुमान लगाकर वे ग्राहकों की जरूरतों का भी पता लगाते हैं। एआई कर्मचारी हर सुबह प्रतिद्वंदी कंपनियों से जुड़ी खबरें भी देखते हैं। विभाग सप्ताह में एक बार कार्यकारी बैठक करता है ताकि कार्यों की प्रगति की जांच हो सके और भावी चुनौतियों का सारांश तैयार किया जा सके। एनईसी अधिकारियों का कहना है कि जब एआई कर्मचारी ने संख्या दर्ज करने में गलती की, तब एआई उच्चाधिकारी ने उस कर्मचारी से उपायों पर बात की ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। कंपनी अधिकारियों का कहना है कि वे एआई कर्मचारियों की भूमिकाओं का विस्तार करना चाहते हैं और इस वर्ष विभाग में सैकड़ों एआई एजेंट काम पर रखना चाहते हैं। मिस्र के कुछ स्कूलों ने जापानी शैली की शिक्षण पद्धति अपनाई है और अब वहां जापानी भाषा की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। मिस्र में ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां बच्चे सफाई, कक्षा बैठकें, बारी बारी से दैनिक कार्य और ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं जो जापानी स्कूलों में आम है। शिक्षा सुधारों के तहत मिस्र ने 2018 से 100 से अधिक ऐसे मिस्र जापान स्कूल स्थापित किए हैं जहां अनुशासन और सहयोग पर जोर दिया जाता है। कुछ अभिभावकों के अनुरोध पर सितंबर में 10 स्कूलों में प्रायोगिक तौर पर जापानी भाषा की कक्षाएं शुरू हुई। उत्तरी मिस्र के स्वेज शहर के एक स्कूल में 7वीं कक्षा की पढ़ाई देखने के लिए सोमवार को जापानी मीडिया को आमंत्रित किया गया। छात्रों ने मिस्र की जापानी भाषा शिक्षिका के साथ गीत के माध्यम से जापानी में 1 से 10 तक गिनती सीखी। उन्होंने जापानी भाषा में अपना परिचय देना भी सीखा। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 33वें पाठ में ये पूछना सीखेंगे कि किसी काम में कितनी देर लगेगी।
1: काइतो और उसका दोस्त माइक मिए प्रिफेक्चर के निंजा संग्रहालय पहुंच गए हैं। वो निंजा के शुरीकेन अस्त्र से निशाना लगाकर देखना चाहते हैं, इसलिए कतार में खड़े हैं। शुरीकेन सितारे जैसा दिखने वाला अस्त्र होता है और उसमें स्टील के ब्लेड लगे रहते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 33वें पाठ की बातचीत।
2: दोनो कुराई माचमासु का? 15分 कुराई देस। वाकारिमाशिता।
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
2: えいああ落ちちゃった
1: Ab is baatcheet ko phir se har vaakye ke arth ke saath sunte hain। Pehle Mike ne sangrahalay ke karmchari se pucha,
2: dono kurai machimasu ka?
0: Kitni der intezar karna hai?
1: Karmchari ne uttar diya,
4: 15分くらいです।
0: लगभग 15 मिनट।
1: तो माइक ने कहा,
2: वाकारिमाशिता।
0: ठीक है।
1: थोड़ी देर में माइक और काइतो की बारी आ गई। काइतो शुरीकेन देखकर उत्साहित होकर बोला,
3: すごい होम्मोनो नो शुरीकेन दा।
0: वाह असली शुरीकेन।
1: फिर दूसरे कर्मचारी ने उनसे कहा,
4: आनो मतो नी नागेते कुदासाई।
0: उस लक्ष्य पर निशाना लगाइए।
1: तो माइक ने शुरीकेन से निशाना लगाया।
2: ए,
0: ये लो।
2: अरे गिर गया।
1: लक्ष्य कुछ मीटर की दूरी पर था और माइक ने सोचा नहीं था कि उस पर निशाना लगाना मुश्किल होगा। शुरीकेन लक्ष्य में नहीं गड़ा और जमीन पर गिर गया।
0: आज का मुख्य वाक्य है
2: दोनों कुराई माचमासु का,
0: यानी कितनी देर इंतजार करना है। ये वाक्य याद करके आप ये पूछना सीख सकेंगे कि किसी काम में कितनी देर लगेगी।
1: इस वाक्य में
5: दोनो कुराई
1: का अर्थ है कितनी देर और
5: माचिमासु का
1: बना है क्रिया
5: माचु
1: यानी इंतजार करना के मास रूप
5: माचिमासु
1: के बाद का लगाकर, जिससे पता चलता है कि ये प्रश्न है।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी काम में कितनी देर लगेगी। ये पूछने के लिए प्रश्नवाचक शब्द
5: दोनो कुराई
0: का उपयोग किया जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल समय, दूरी या मात्रा के बारे में पूछने के लिए भी कर सकते हैं।
1: कितनी देर इंतजार करना है, ये पूछने के लिए इंतजार करना यानी मात्सु से वाक्य बना दोनो कुराई माचिमास का।
0: तो अब उच्चारण करने का अभ्यास कर लीजिए।
5: माचिमास का どのくらい待ちますか?
1: अब एक और बातचीत सुनते हैं, जिसमें एक आदमी टैक्सी में हवाई अड्डे जा रहा है और रास्ते में बहुत भीड़ है।
6: すみません。あとどのくらいかかりますか? 20分くらいです。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले ग्राहक ने पूछा,
6: すみません。あとどのくらいかかりますか?
0: माफ कीजिए, और कितनी देर लगेगी?
5: すみません
1: का उपयोग किसी का ध्यान खींचने के लिए किया जाता है।
5: あと
1: का अर्थ है और या बाकी।
5: かかります
0: है क्रिया
5: かかる
0: यानी लगना का मास रूप। इसका इस्तेमाल समय या पैसे जैसी चीजों के लिए किया जाता है।
1: टैक्सी चालक ने उत्तर दिया,
4: 20分くらいです।
0: लगभग 20 मिनट।
5: 20分
1: का अर्थ है 20 मिनट और
5: くらい
1: का अर्थ है लगभग।
0: अब वाक्य सुनिए और साथ में बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
5: どのくらいかかりますか?あとどのくらいかかりますか?
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप किसी संग्रहालय में जाना चाहते हैं, आपने किसी से बस से जाने का रास्ता पूछा और उसने बताया कि आप पैदल भी जा सकते हैं। अब आप जानना चाहते हैं कि कितनी देर चलना होगा। चलना के लिए जापानी भाषा की क्रिया है
5: आरुक
1: और उसका मास रूप है
5: आरुकिमास, आरुकिमास।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
7: どのくらい歩きますか？どのくらい歩きますか？
0: अब सीख लेते हैं कुछ संबंधित शब्द। आज का विषय है अवधि बताना। जैसे पाठ में इंतजार करने की अवधि थी जुगो फुन कोराई, यानी लगभग 15 मिनट।
1: मिनट को जापानी भाषा में कहते हैं
5: हुन।
1: इसे संख्या के बाद लगाते हैं, जैसे 5 मिनट है
5: गोफुन
1: और 10 मिनट है
5: जुपुन।
0: ध्यान रखिएगा कि 10 यानी
5: जू
0: के बाद
5: हुन
0: जोड़ने पर उसका उच्चारण बदल कर पुन हो जाता है।
1: तो सुनिए और उच्चारण करने का अभ्यास कीजिए। 5 मिनट है
5: गोफुन,
1: 10 मिनट है
5: जुपुन,
1: 15 मिनट है
5: जूगोफुन
1: और 20 मिनट है
5: निजुपुन।
0: अगर घंटों में अवधि बताना चाहते हो तो घंटे को कहते हैं
5: जिकांग।
0: इसलिए आपको संख्या के बाद
5: जिकांग
0: जोड़ना है, जैसे 1 घंटा है
5: इची जिकांग
0: और 2 घंटे हैं
5: निजिकांग।
1: कुछ संख्याओं के लिए आम गिनती से अलग शब्द का उपयोग होता है। 4 घंटे है
5: योजिकांग,
1: 7 घंटे है
5: शिचिजिकांग
1: और 9 घंटे है
5: खुजिकांग।
1: इन्हें अच्छी तरह याद कर लीजिए।
0: और अगर हमें कहना हो 1.5 घंटा यानी 1 घंटा और 30 मिनट, तो जापानी भाषा में बोलेंगे इचिजिकांग सांजुपुन।
1: लेकिन 30 मिनट यानी
5: सांजुपुन
1: की जगह
5: हां
1: यानी आधा भी कह सकते हैं। इसलिए 1.5 घंटा बोलने का एक और तरीका है
5: इचिजिकांग हां।
0: तो चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: どのくらい待ちますか？15分くらいです。わかりました。
3: すごい！本物の手裏剣だ！
4: あの的に投げてください。
6: えい！ああ、落ちちゃった。
2: マイクと一緒にポップカルチャ
1: ー। अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बता रहे हैं प्रायोगिक पर्यटन के बारे में।
0: जापान में पर्यटक विभिन्न अनुभवों का आनंद ले सकते हैं। जैसे आज के पाठ में माइक और काइतो ने निंजा के शुरिकेन अस्त्र से निशाना लगाकर देखा।
1: आप चाहें तो निंजा या सामुराई की पोशाक पहन सकते हैं या किमोनो पहनकर देख सकते हैं, चाय समारोह में भाग ले सकते हैं और फूलों से सजावट करना या जापानी मिठाइयाँ बनाना भी सीख सकते हैं।
0: इसके अलावा भी करने के लिए बहुत कुछ है। आप खाने की चीजों के प्लास्टिक नमूने भी बनाकर देख सकते हैं। इस तरह के नमूने अक्सर रेस्तरां के बाहर सजे रहते हैं और बिल्कुल असली व्यंजन जैसे दिखते हैं।
1: और जापान में ऐसे प्रतिष्ठान भी हैं जहां आप भूकंप, मूसलाधार वर्षा, आग और सुनामी जैसी आपदाओं का कृत्रिम अनुभव लेकर आपदा तैयारी और रोकथाम के बारे में सीख सकते हैं।
0: है ना दिलचस्प? तो आप भी यहां ऐसे अनुभवों का आनंद जरूर लीजिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम और माइक मांगा कैफे जाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।
8: 再放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 13 अक्टूबर मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। इस वर्ष की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नवी पिल्लई ने द हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का दौरा कर अमरीकी प्रतिबंधों के तहत कठिनाइयों का सामना कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया है। पिल्लई 2003 से लेकर 2008 तक आईसीसी में न्यायाधीश रह चुकी हैं। सोमवार को अपने इस दौरे में उन्होंने आईसीसी अध्यक्ष अकाने तोमो को और कर्मचारियों से मुलाकात की। पिल्लई ने आईसीसी की भूमिका के महत्व पर बल देते हुए कहा कि उनकी करुणा और साहस ये सुनिश्चित करते रहेंगे कि अपराधी दंड से बच ना पाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि उसने अकाने को निशाना बनाने के बाद आईसीसी पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अकाने ने पिल्लई को बधाई देते हुए कहा, ये इस बात की अहम स्वीकारोक्ति है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय स्थायी शांति की आधारशिला के रूप में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिल्लई ने शनिवार को एक कार्यक्रम में आईसीसी से जुड़े हालातों पर चिंता व्यक्त की थी। अमेरिका का नाम लिए बिना उन्होंने कहा था कि एक देश ने न्यायाधीशों के न्यायिक आदेशों को लेकर उन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है जो अभूतपूर्व और अस्वीकार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच हुए ऊर्जा संघर्ष विराम समझौते का दोनों पक्षों की ओर से उल्लंघन हुआ है। ट्रंप ने इससे पहले इस समझौते की घोषणा की थी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को समझौता करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस बारे में बात करने पर। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समझौता करना चाहते हैं और हमें जेलेंस्की को उनके साथ समझौता करने के लिए राजी करना होगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स ने सोमवार को कहा कि ट्रंप की संघर्ष विराम घोषणा के बावजूद रूस यूक्रेन की नागरिक ऊर्जा अवसंरचना पर लगातार भीषण हमले कर रहा है। उन्होंने कहा, रूस स्पष्ट रूप से शांतिपूर्ण प्रस्तावों या मौजूदा वार्ता सुझावों पर प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस उसकी ऊर्जा अवसंरचना पर लगातार हमले कर रहा है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच ऊर्जा संघर्ष विराम की घोषणा की है। ट्रंप की घोषणा के अगले दिन सोमवार को जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अकेले उसी दिन रूस ने यूक्रेन में 6 ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया। जेलेंस्की ने आगे लिखा कि अगर देश संघर्ष समाप्त करने के बारे में गंभीर है तो उन्हें रूस पर अधिक दबाव डालने की आवश्यकता है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि यूक्रेन में नया राष्ट्रपति चुनने का समय आ गया है। इसके बारे में जेलेंस्की ने रविवार को एबीसी न्यूज से कहा कि अगर रूस 60 दिनों के पूर्ण संघर्ष विराम पर सहमत हो जाता है तो यूक्रेन उस दौरान चुनाव करवा सकता है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। यमन में सरकार विरोधी हूथी गुट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी है कि गुट के खिलाफ सऊदी अरब के सैन्य अभियान में अगर अमरीका शामिल होता है तो तुरंत कड़ा जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूथी गुट के हमलों के बाद ये चेतावनी जारी की गई है। सप्ताह अंत में हुए इन हमलों में 14 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी की खबर के अनुसार सऊदी अधिकारियों ने नुकसान के कारण हवाई अड्डे को अब 17 अक्टूबर तक बंद करने का फैसला लिया है। सोमवार को यमन की अंतरिम सरकार का समर्थन करने वाले सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने घोषणा की कि रियाद की ओर दागी गई हूथी गुट की एक मिसाइल को मार गिराया गया। पत्रकारों ने शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या अमरीका हूथी विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के सैन्य अभियान में शामिल होगा, तो उन्होंने जवाब दिया, हम शायद ऐसा करें, हम इस पर विचार करेंगे। जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी NEC ने एक मानव रहित विभाग बनाया है जो पूरी तरह AI से संचालित है। इसका उद्देश्य ये अध्ययन करना है कि AI का प्रबंधन में सहायता के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है। विभाग के प्रमुख से लेकर कर्मचारियों तक सभी पदों पर 39 AI एजेंट काम करते हैं। AI एजेंट्स को उनकी भूमिका के आधार पर नाम दिए गए हैं। AI कर्मचारी रिपोर्ट तैयार करते हैं और जानकारी इकट्ठा करके अंतिम निर्णय लेने वालों की सहायता करते हैं। वे वित्तीय विश्लेषण के लिए मासिक बिक्री पर भी नजर रखते हैं। ग्राहकों के पिछले व्यावसायिक लेन देन के आधार पर सिस्टम अपडेट करने की टाइमिंग का अनुमान लगाकर वे ग्राहकों की जरूरतों का भी पता लगाते हैं। AI कर्मचारी हर सुबह प्रतिद्वंदी कंपनियों से जुड़ी खबरें भी देखते हैं। विभाग सप्ताह में एक बार कार्यकारी बैठक करता है ताकि कार्यों की प्रगति की जांच हो सके और भावी चुनौतियों का सारांश तैयार किया जा सके। NEC अधिकारियों का कहना है कि जब AI कर्मचारी ने संख्या दर्ज करने में गलती की, तब AI उच्चाधिकारी ने उस कर्मचारी से उपायों पर बात की ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। कंपनी अधिकारियों का कहना है कि वे AI कर्मचारियों की भूमिकाओं का विस्तार करना चाहते हैं और इस वर्ष विभाग में सैकड़ों AI एजेंट काम पर रखना चाहते हैं। मिस्र के कुछ स्कूलों ने जापानी शैली की शिक्षण पद्धति अपनाई है और अब वहां जापानी भाषा की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। मिस्र में ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां बच्चे सफाई, कक्षा बैठकें, बारी बारी से दैनिक कार्य और ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं जो जापानी स्कूलों में आम है। शिक्षा सुधारों के तहत मिस्र ने 2018 से 100 से अधिक ऐसे मिस्र जापान स्कूल स्थापित किए हैं जहां अनुशासन और सहयोग पर जोर दिया जाता है। कुछ अभिभावकों के अनुरोध पर सितंबर में 10 स्कूलों में प्रायोगिक तौर पर जापानी भाषा की कक्षाएं शुरू हुई। उत्तरी मिस्र के स्वेज शहर के एक स्कूल में 7वीं कक्षा की पढ़ाई देखने के लिए सोमवार को जापानी मीडिया को आमंत्रित किया गया। छात्रों ने मिस्र की जापानी भाषा शिक्षिका के साथ गीत के माध्यम से जापानी में 1 से 10 तक गिनती सीखी। उन्होंने जापानी भाषा में अपना परिचय देना भी सीखा। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 33वें पाठ में ये पूछना सीखेंगे कि किसी काम में कितनी देर लगेगी।
1: काइतो और उसका दोस्त माइक मिए प्रिफेक्चर के निंजा संग्रहालय पहुंच गए हैं। वो निंजा के शुरीकेन अस्त्र से निशाना लगाकर देखना चाहते हैं, इसलिए कतार में खड़े हैं। शुरीकेन सितारे जैसा दिखने वाला अस्त्र होता है और उसमें स्टील के ब्लेड लगे रहते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 33वें पाठ की बातचीत।
2: दोनों कुराई माचमास का 15 फुन कुराई देस। वाकरिमास्ता।
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
1: Ab is baatcheet ko phir se har vaakye ke arth ke saath sunte hain। Pehle Mike ne sangrahalay ke karmchari se pucha,
2: dono kurai machimasu ka,
0: kitni der intezar karna hai।
1: Karmchari ne uttar diya,
4: 15 फुन कुराई देस,
0: लगभग 15 मिनट।
1: तो माइक ने कहा,
4: वाकरिमास्ता,
0: ठीक है।
1: थोड़ी देर में माइक और काइतो की बारी आ गई। काइतो शुरीकेन देखकर उत्साहित होकर बोला,
3: सुगोई होन्मोनो नो शुरीकेन दा,
0: वाह असली शुरीकेन।
1: फिर दूसरे कर्मचारी ने उनसे कहा,
4: आनो मतो नी नागेते कुदासाई,
0: उस लक्ष्य पर निशाना लगाइए।
1: तो माइक ने शुरीकेन से निशाना लगाया।
3: ए,
0: ये लो।
3: अरे
0: गिर गया।
1: लक्ष्य कुछ मीटर की दूरी पर था और माइक ने सोचा नहीं था कि उस पर निशाना लगाना मुश्किल होगा। शुरीकेन लक्ष्य में नहीं गड़ा और जमीन पर गिर गया।
0: आज का मुख्य वाक्य है
2: दोनों कुराई माचमस का,
0: यानी कितनी देर इंतजार करना है। ये वाक्य याद करके आप ये पूछना सीख सकेंगे कि किसी काम में कितनी देर लगेगी।
1: इस वाक्य में
5: दोनों कुराई
1: का अर्थ है कितनी देर और
5: माचिमास का
1: बना है क्रिया
5: माच
1: यानी इंतजार करना के मास रूप
5: माचिमास
1: के बाद का लगाकर, जिससे पता चलता है कि ये प्रश्न है।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी काम में कितनी देर लगेगी। ये पूछने के लिए प्रश्नवाचक शब्द
5: दोनों कुराई
0: का उपयोग किया जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल समय, दूरी या मात्रा के बारे में पूछने के लिए भी कर सकते हैं।
1: कितनी देर इंतजार करना है, ये पूछने के लिए इंतजार करना यानी मात्सु से वाक्य बना दोनों कुराई माचिमास का।
0: तो अब उच्चारण करने का अभ्यास कर लीजिए।
5: माचिमास का どのくらい待ちますか？
1: अब एक और बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी टैक्सी में हवाई अड्डे जा रहा है और रास्ते में बहुत भीड़ है।
6: すみません。あとどのくらいかかりますか？20分くらいです。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले ग्राहक ने पूछा,
6: सुमिमासे, आतो दोनो कुराई काकारिमास का?
0: माफ कीजिए, और कितनी देर लगेगी?
5: सुमिमासेन
1: का उपयोग किसी का ध्यान खींचने के लिए किया जाता है।
5: आतो
1: का अर्थ है और या बाकी।
5: काकारिमास
0: है क्रिया
5: काकारु
0: यानी लगना का मास रूप। इसका इस्तेमाल समय या पैसे जैसी चीजों के लिए किया जाता है।
1: टैक्सी चालक ने उत्तर दिया,
4: 20 फुन कुराई देस,
0: लगभग 20 मिनट।
5: 20 फुन
1: का अर्थ है 20 मिनट और
5: कुराई
1: का अर्थ है लगभग।
0: अब वाक्य सुनिए और साथ में बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
5: दोनों कुराई काकारिमास का? आतो दोनों कुराई काकारिमास का?
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप किसी संग्रहालय में जाना चाहते हैं, आपने किसी से बस से जाने का रास्ता पूछा और उसने बताया कि आप पैदल भी जा सकते हैं। अब आप जानना चाहते हैं कि कितनी देर चलना होगा। चलना के लिए जापानी भाषा की क्रिया है
5: अरुकु
1: और उसका मास रूप है
5: अरुकिमास, अरुकिमास।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
7: どのくらい歩きますか？どのくらい歩きますか？
0: अब सीख लेते हैं कुछ संबंधित शब्द। आज का विषय है अवधि बताना। जैसे पाठ में इंतजार करने की अवधि थी जुगो फुन कोराई, यानी लगभग 15 मिनट।
1: मिनट को जापानी भाषा में कहते हैं
5: हुं।
1: इसे संख्या के बाद लगाते हैं, जैसे 5 मिनट है
5: गोफुन
1: और 10 मिनट है
5: जुपुन।
0: ध्यान रखिएगा कि 10 यानी
5: जु
0: के बाद
5: हुं
0: जोड़ने पर उसका उच्चारण बदल कर पुन हो जाता है।
1: तो सुनिए और उच्चारण करने का अभ्यास कीजिए। 5 मिनट है
5: गोफुन,
1: 10 मिनट है
5: जुपुन,
1: 15 मिनट है
5: जुगोफुन
1: और 20 मिनट है
5: निजुपुन।
0: अगर घंटों में अवधि बताना चाहते हो तो घंटे को कहते हैं
5: जिकांग।
0: इसलिए आपको संख्या के बाद
5: जिकांग
0: जोड़ना है, जैसे 1 घंटा है
5: इचिजिकांग
0: और 2 घंटे हैं
5: निजिकांग।
1: कुछ संख्याओं के लिए आम गिनती से अलग शब्द का उपयोग होता है। 4 घंटे है
5: योजिकांग,
1: 7 घंटे है
5: शिजिकांग
1: और 9 घंटे है
5: खुजिकांग।
1: इन्हें अच्छी तरह याद कर लीजिए।
0: और अगर हमें कहना हो 1.5 घंटा यानी 1 घंटा और 30 मिनट तो जापानी भाषा में बोलेंगे इचिजिकान सांजुपुन।
1: लेकिन 30 मिनट यानी
5: सांजुपुन
1: की जगह
5: हां
1: यानी आधा भी कह सकते हैं। इसलिए 1.5 घंटा बोलने का एक और तरीका है
5: इचिजिकान हां।
0: तो चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: どのくらい待ちますか？15分くらいです。わかりました。
3: すごい！本物の手裏剣だ！
4: あの的に投げてください。
6: えい！ああ、落ちちゃった。
2: バイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。 अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बता रहे हैं प्रायोगिक पर्यटन के बारे में।
0: जापान में पर्यटक विभिन्न अनुभवों का आनंद ले सकते हैं। जैसे आज के पाठ में माइक और काइतो ने निंजा के शुरिकेन अस्त्र से निशाना लगाकर देखा।
1: आप चाहें तो निंजा या सामुराई की पोशाक पहन सकते हैं या किमोनो पहनकर देख सकते हैं, चाय समारोह में भाग ले सकते हैं और फूलों से सजावट करना या जापानी मिठाइयाँ बनाना भी सीख सकते हैं।
0: इसके अलावा भी करने के लिए बहुत कुछ है। आप खाने की चीजों के प्लास्टिक नमूने भी बनाकर देख सकते हैं। इस तरह के नमूने अक्सर रेस्तरां के बाहर सजे रहते हैं और बिल्कुल असली व्यंजन जैसे दिखते हैं।
1: और जापान में ऐसे प्रतिष्ठान भी हैं जहां आप भूकंप, मूसलाधार वर्षा, आग और सुनामी जैसी आपदाओं का कृत्रिम अनुभव लेकर आपदा तैयारी और रोकथाम के बारे में सीख सकते हैं।
0: है ना दिलचस्प? तो आप भी यहां ऐसे अनुभवों का आनंद जरूर लीजिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम और माइक मांगा कैफे जाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।
8: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। यमन की हुकूमत मुखालिफ हूसी फोर्सेस के एक आला ओहदेदार ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका हूसियों के खिलाफ सऊदी क्यादत में फौजी मुहिम में शामिल हुआ तो फौरी और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। ये इंतबाह हूसियों की जानिब से सऊदी दारुलहुकूमत रियाद के बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे पर हमले के बाद दिया गया है। हफ्ते के आखिर में होने वाले इन हमलों में 14 अफराद हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी हुए थे। खबर रसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान की वजह से सऊदी हुकाम ने हवाई अड्डे की बंदिश में 17 अक्टूबर तक तोसी कर दी है। यमन की अबूरी हुकूमत के हामी सऊदी क्यादत वाले इतिहाद ने पीर के रोज ऐलान किया कि रियाज की तरफ दागे गए एक हूसी मिजाइल को फजा में रोक लिया गया। हफ्ते के रोज नामानिगारों की जानिब से पूछे जाने पर कि आया अमरीका हूसियों के खिलाफ सऊदी अरब की फौजी मुहिम में शामिल होगा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, ये हो सकता है, हम इसका जायजा लेंगे। जापान की बरकी मसनूआत साज कंपनी NEC ने मुकम्मल तौर पर मसनूई जहानत से चलने वाला एक बगैर इंसानी अमले का शोबा कायम किया है ताकि ये जांचा जा सके कि इंतजामी उमूर में इसे किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस महकमे में सरबराह शोबा से लेकर तमाम ओहदों पर 39 AI एजेंट्स तैनात हैं जिन्हें उनके मुकरर का किरदार के मुताबिक नाम दिए गए हैं। AI कारकुनान रिपोर्टें तैयार करते हैं और मालूमात इकट्ठा करके हतमी फैसले करने वालों की मदद करते हैं। इसमें मालियात का तजिया करने के लिए माहाना फरोख्त का जायजा लेना शामिल है। वो पुराने रिकॉर्ड से ये हिसाब लगाते हैं कि ग्राहकों को अगली बार अपना सिस्टम अपडेट करने की ज़रूरत कब होगी और इसके मुताबिक वो वक्त से पहले ही ग्राहकों की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। AI अमला हर सुबह हरीफ कंपनियों से मुतालिक खबरें भी चेक करता है। ये शोबा अहदाफ पर पेशरफ्त को जांचने और मुस्तकबिल के चैलेंजों का खुलासा करने के लिए हफ्ते में एक बार आला इंतजामी इजलास मुनक्किद करता है। NEC के हुकाम का कहना है कि एक AI मुलाजिम ने नंबर दर्ज करने में गलती होने के बाद एक AI ऑफिसर ने उसका इंटरव्यू किया ताकि ऐसी गलती दोबारा होने से रोकने के इकदाम पर बात की जा सके। कंपनी के हुकाम का कहना है कि वो AI अमले के किरदार को बढ़ाना चाहते हैं और इस साल शोबे में सैकड़ों AI एजेंट्स शामिल करेंगे। मिस्र के उन स्कूलों में जापानी जबान की क्लासें शुरू हो गई हैं जिन्होंने जापानी तर्ज तालीम के तरीकों को अपनाया है। मिस्र में ऐसे सरकारी स्कूल मौजूद हैं जहां बच्चे सफाई, जमाती इजलासों, बारी बारी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां निभाने समेत दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं जो जापानी स्कूलों में आम हैं। इस मुल्क ने तालीमी इस्लाहात के एक हिस्से के तौर पर 2018 से अब तक ऐसे 100 से ज्यादा मिस्र जापान स्कूल कायम किए हैं जिनमें नज्म व ज़ब्त और बाहमी तआवुन पर जोर दिया जाता है। कुछ वालदेन की दरख्वास्तों के बाद सितंबर में 10 स्कूलों में आजमाइशी बुनियादों पर जापानी जबान की क्लासों का आगाज हुआ। पीर को जापानी ज़राए इब्लाग को शुमाली मिस्र के शहर स्वीस के एक स्कूल में 7वीं जमात के तलबा की पढ़ाई का मुशाहिदा करने के लिए मदऊ किया गया। तलबा ने जापानी जबान के मिस्री उस्ताद के साथ गाने के जरिए जापानी जबान में 1 से 10 तक गिनती की मश्क की। उन्होंने जापानी जबान में अपना तारुफ कराने का तरीका भी सीखा। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: जी, आज का मकालमा माइकल काइतो के शुरीकेन या निंजा स्टार फेंकने के इवेंट में शिरकत से मुतालिक था।
1: ऐसी और भी कई सरगर्मियां हैं जिनमें सयाह शिरकत कर सकते हैं। इनमें निंजा या सामुराई का भेष बदलने के अलावा किमोनो पहनना, चाय की तकरीब में शिरकत, फूलों की सजावट का फन इकेबाना और जापानी मिठाई बनाना मकबूल सरगर्मियां हैं। सयाह ऐसी आम सरगर्मियों से हटकर बिल्कुल मुख्तलिफ सरगर्मी में भी शिरकत कर सकते हैं।
0: बिल्कुल मुख्तलिफ? मसलन किस तरह की?
1: मसलन रेस्तरानों की शो विंडो में सजे हुए अशिया खुर्दनी के नमूने तो आपने देखे ही होंगे।
0: जी हाँ, प्लास्टिक से तैयार किए जाने वाले ये नमूने बिल्कुल असली खानों जैसे ही लगते हैं।
1: सयाह प्लास्टिक के ये नमूने बनाने के इवेंट में शिरकत कर सकते हैं और सानहात से बचाव की मालूमात में इजाफे के लिए जापानी अंदाज की मखसूस सहूलियात में जलजले, शदीद बारिश, आग या सुनामी के सिमुलेशन में शिरकत भी मुमकिन है।
0: ये सरगर्मियाँ दिलचस्प होने के साथ साथ हंगामी सूरतेहाल की तैयारी के लिहाज से भी मुफीद हैं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 13 अक्टूबर मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। इस वर्ष की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नवी पिल्लई ने द हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का दौरा कर अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत कठिनाइयों का सामना कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया है। पिल्लई 2003 से लेकर 2008 तक आईसीसी में न्यायाधीश रह चुकी हैं। सोमवार को अपने इस दौरे में उन्होंने आईसीसी अध्यक्ष अकाने तोमो को और कर्मचारियों से मुलाकात की। पिल्लई ने आईसीसी की भूमिका के महत्व पर बल देते हुए कहा कि उनकी करुणा और साहस ये सुनिश्चित करते रहेंगे कि अपराधी दंड से बच ना पाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि उसने आकाने को निशाना बनाने के बाद आईसीसी पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आकाने ने पिल्लई को बधाई देते हुए कहा, ये इस बात की अहम स्वीकारोक्ति है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय स्थायी शांति की आधारशिला के रूप में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिल्लई ने शनिवार को एक कार्यक्रम में आईसीसी से जुड़े हालातों पर चिंता व्यक्त की थी। अमेरिका का नाम लिए बिना उन्होंने कहा था कि एक देश ने न्यायाधीशों के न्यायिक आदेशों को लेकर उन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है जो अभूतपूर्व और अस्वीकार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच हुए ऊर्जा संघर्ष विराम समझौते का दोनों पक्षों की ओर से उल्लंघन हुआ है। ट्रंप ने इससे पहले इस समझौते की घोषणा की थी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को समझौता करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस बारे में बात करने पर। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समझौता करना चाहते हैं और हमें जेलेंस्की को उनके साथ समझौता करने के लिए राजी करना होगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स ने सोमवार को कहा कि ट्रंप की संघर्ष विराम घोषणा के बावजूद रूस यूक्रेन की नागरिक ऊर्जा अवसंरचना पर लगातार भीषण हमले कर रहा है। उन्होंने कहा, रूस स्पष्ट रूप से शांतिपूर्ण प्रस्तावों या मौजूदा वार्ता सुझावों पर प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस उसकी ऊर्जा अवसंरचना पर लगातार हमले कर रहा है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच ऊर्जा संघर्ष विराम की घोषणा की है। ट्रंप की घोषणा के अगले दिन सोमवार को जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अकेले उसी दिन रूस ने यूक्रेन में 6 ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया। जेलेंस्की ने आगे लिखा कि अगर देश संघर्ष समाप्त करने के बारे में गंभीर हैं, तो उन्हें रूस पर अधिक दबाव डालने की आवश्यकता है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि यूक्रेन में नया राष्ट्रपति चुनने का समय आ गया है। इसके बारे में जेलेंस्की ने रविवार को एबीसी न्यूज से कहा कि अगर रूस 60 दिनों के पूर्ण संघर्ष विराम पर सहमत हो जाता है, तो यूक्रेन उस दौरान चुनाव करवा सकता है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। यमन में सरकार विरोधी हूथी गुट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी है कि गुट के खिलाफ सऊदी अरब के सैन्य अभियान में अगर अमरीका शामिल होता है तो तुरंत कड़ा जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूथी गुट के हमलों के बाद ये चेतावनी जारी की गई है। सप्ताहांत में हुए इन हमलों में 14 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी की खबर के अनुसार सऊदी अधिकारियों ने नुकसान के कारण हवाई अड्डे को अब 17 अक्टूबर तक बंद करने का फैसला लिया है। सोमवार को यमन की अंतरिम सरकार का समर्थन करने वाले सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने घोषणा की कि रियाद की ओर दागी गई हूथी गुट की एक मिसाइल को मार गिराया गया। पत्रकारों ने शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या अमेरिका हूथी विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के सैन्य अभियान में शामिल होगा, तो उन्होंने जवाब दिया, हम शायद ऐसा करें, हम इस पर विचार करेंगे। जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी NEC ने एक मानव रहित विभाग बनाया है जो पूरी तरह AI से संचालित है। इसका उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि AI का प्रबंधन में सहायता के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है। विभाग के प्रमुख से लेकर कर्मचारियों तक सभी पदों पर 39 AI एजेंट काम करते हैं। AI एजेंट्स को उनकी भूमिका के आधार पर नाम दिए गए हैं। AI कर्मचारी रिपोर्ट तैयार करते हैं और जानकारी इकट्ठा करके अंतिम निर्णय लेने वालों की सहायता करते हैं। वे वित्तीय विश्लेषण के लिए मासिक बिक्री पर भी नजर रखते हैं। ग्राहकों के पिछले व्यावसायिक लेनदेन के आधार पर सिस्टम अपडेट करने की टाइमिंग का अनुमान लगाकर वे ग्राहकों की जरूरतों का भी पता लगाते हैं। AI कर्मचारी हर सुबह प्रतिद्वंदी कंपनियों से जुड़ी खबरें भी देखते हैं। विभाग सप्ताह में एक बार कार्यकारी बैठक करता है ताकि कार्यों की प्रगति की जांच हो सके और भावी चुनौतियों का सारांश तैयार किया जा सके। NEC अधिकारियों का कहना है कि जब AI कर्मचारी ने संख्या दर्ज करने में गलती की, तब AI उच्चाधिकारी ने उस कर्मचारी से उपायों पर बात की ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। कंपनी अधिकारियों का कहना है कि वे AI कर्मचारियों की भूमिकाओं का विस्तार करना चाहते हैं और इस वर्ष विभाग में सैकड़ों AI एजेंट काम पर रखना चाहते हैं। मिस्र के कुछ स्कूलों ने जापानी शैली की शिक्षण पद्धति अपनाई है और अब वहां जापानी भाषा की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। मिस्र में ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां बच्चे सफाई, कक्षा बैठकें, बारी बारी से दैनिक कार्य और ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं जो जापानी स्कूलों में आम है। शिक्षा सुधारों के तहत मिस्र ने 2018 से 100 से अधिक ऐसे मिस्र जापान स्कूल स्थापित किए हैं जहां अनुशासन और सहयोग पर जोर दिया जाता है। कुछ अभिभावकों के अनुरोध पर सितंबर में 10 स्कूलों में प्रायोगिक तौर पर जापानी भाषा की कक्षाएं शुरू हुई। उत्तरी मिस्र के स्वेज शहर के एक स्कूल में 7वीं कक्षा की पढ़ाई देखने के लिए सोमवार को जापानी मीडिया को आमंत्रित किया गया। छात्रों ने मिस्र की जापानी भाषा शिक्षिका के साथ गीत के माध्यम से जापानी में 1 से 10 तक गिनती सीखी। उन्होंने जापानी भाषा में अपना परिचय देना भी सीखा। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 33वें पाठ में ये पूछना सीखेंगे कि किसी काम में कितनी देर लगेगी।
1: काइतो और उसका दोस्त माइक मिए प्रिफेक्चर के निंजा संग्रहालय पहुंच गए हैं। वो निंजा के शुरिकेन अस्त्र से निशाना लगाकर देखना चाहते हैं, इसलिए कतार में खड़े हैं। शुरिकेन सितारे जैसा दिखने वाला अस्त्र होता है और उसमें स्टील के ब्लेड लगे रहते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 33वें पाठ की बातचीत।
2: दोनों कुराई माचमास का 15 कुराई देस। वाकरिमास्ता।
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
1: Ab is baatcheet ko phir se har vaakye ke arth ke saath sunte hain. Pehle Mike ne sangrahalay ke karmchari se pucha.
2: Dono kurai machimasu ka?
0: Kitni der intezar karna hai?
1: Karmchari ne uttar diya.
4: 15 फुन कुराई देस।
0: लगभग 15 मिनट।
1: तो माइक ने कहा,
2: वाकरिमास्ता।
0: ठीक है।
1: थोड़ी देर में माइक और काइतो की बारी आ गई। काइतो शुरिकेन देखकर उत्साहित होकर बोला,
3: すごい होममोनो नो शुरिकेन दा।
0: वाह असली शुरिकेन।
1: फिर दूसरे कर्मचारी ने उनसे कहा,
4: आनो मतो नी नागेते कुदासाई।
0: उस लक्ष्य पर निशाना लगाइए।
1: तो माइक ने शुरिकेन से निशाना लगाया।
3: ए
0: ये लो।
3: अरे
0: गिर गया।
1: लक्ष्य कुछ मीटर की दूरी पर था और माइक ने सोचा नहीं था कि उस पर निशाना लगाना मुश्किल होगा। शुरिकेन लक्ष्य में नहीं गड़ा और जमीन पर गिर गया।
0: आज का मुख्य वाक्य है
2: दोनों कुराई माचमस का,
0: यानी कितनी देर इंतजार करना है। ये वाक्य याद करके आप ये पूछना सीख सकेंगे कि किसी काम में कितनी देर लगेगी।
1: इस वाक्य में
5: दोनों कुराई
1: का अर्थ है कितनी देर और
5: माचिमास का
1: बना है क्रिया
5: माच
1: यानी इंतजार करना के मास रूप
5: माचिमास
1: के बाद का लगाकर, जिससे पता चलता है कि ये प्रश्न है।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी काम में कितनी देर लगेगी। ये पूछने के लिए प्रश्नवाचक शब्द
5: दोनों कुराई
0: का उपयोग किया जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल समय दूरी या मात्रा के बारे में पूछने के लिए भी कर सकते हैं।
1: कितनी देर इंतजार करना है ये पूछने के लिए इंतजार करना यानी मात्सु से वाक्य बना दोनों कुराई माचिमास का।
0: तो अब उच्चारण करने का अभ्यास कर लीजिए।
5: माचिमास का どのくらい待ちますか?
1: अब एक और बातचीत सुनते हैं, जिसमें एक आदमी टैक्सी में हवाई अड्डे जा रहा है और रास्ते में बहुत भीड़ है।
6: すみません。あとどのくらいかかりますか? 20分くらいです。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले ग्राहक ने पूछा,
6: すみません。あとどのくらいかかりますか?
0: माफ कीजिए, और कितनी देर लगेगी?
5: すみません
1: का उपयोग किसी का ध्यान खींचने के लिए किया जाता है।
5: あと
1: का अर्थ है और या बाकी।
5: かかります
0: है क्रिया
5: かかる
0: यानी लगना का मास रूप। इसका इस्तेमाल समय या पैसे जैसी चीजों के लिए किया जाता है।
1: टैक्सी चालक ने उत्तर दिया,
4: 20 फुन कुराई देस।
0: लगभग 20 मिनट।
5: 20 फुन
1: का अर्थ है 20 मिनट और
5: कुराई
1: का अर्थ है लगभग।
0: अब वाक्य सुनिए और साथ में बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
5: दोनों कुराई काकारीमास का? आतो दोनों कुराई काकारीमास का?
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप किसी संग्रहालय में जाना चाहते हैं, आपने किसी से बस से जाने का रास्ता पूछा और उसने बताया कि आप पैदल भी जा सकते हैं। अब आप जानना चाहते हैं कि कितनी देर चलना होगा। चलना के लिए जापानी भाषा की क्रिया है
5: आरुकु
1: और उसका मास रूप है
5: आरुकिमास।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
7: どのくらい歩きますか？どのくらい歩きますか？
0: अब सीख लेते हैं कुछ संबंधित शब्द। आज का विषय है अवधि बताना। जैसे पाठ में इंतजार करने की अवधि थी जूगो फुन कोराई, यानी लगभग 15 मिनट।
1: मिनट को जापानी भाषा में कहते हैं
5: हुं।
1: इसे संख्या के बाद लगाते हैं, जैसे 5 मिनट है
5: गोफुन
1: और 10 मिनट है
5: जुपुन।
0: ध्यान रखिएगा कि 10 यानी
5: जू
0: के बाद
5: हुं
0: जोड़ने पर उसका उच्चारण बदल कर पुन हो जाता है।
1: तो सुनिए और उच्चारण करने का अभ्यास कीजिए। 5 मिनट है
5: गोफुन,
1: 10 मिनट है
5: जुपुन,
1: 15 मिनट है
5: जूगोफुन
1: और 20 मिनट है
5: निजुपुन।
0: अगर घंटों में अवधि बताना चाहते हो तो घंटे को कहते हैं
5: जिकां।
0: इसलिए आपको संख्या के बाद
5: जिकां
0: जोड़ना है, जैसे 1 घंटा है
5: इची जिकां
0: और 2 घंटे हैं
5: निजिकां।
1: कुछ संख्याओं के लिए आम गिनती से अलग शब्द का उपयोग होता है। 4 घंटे है
5: योजिकां,
1: 7 घंटे है
5: शिजिकां
1: और 9 घंटे है
5: खुजिकां।
1: इन्हें अच्छी तरह याद कर लीजिए।
0: और अगर हमें कहना हो 1.5 घंटा यानी 1 घंटा और 30 मिनट तो जापानी भाषा में बोलेंगे इचिजिकान सांजुपुन।
1: लेकिन 30 मिनट यानी
5: सांजुपुन
1: की जगह
5: हां
1: यानी आधा भी कह सकते हैं, इसलिए 1.5 घंटा बोलने का एक और तरीका है
5: इचिजिकान हां।
0: तो चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: どのくらい待ちますか？15分くらいです。わかりました。
3: すごい！本物の手裏剣だ！
4: あの的に投げてください。
6: えい！ああ、落ちちゃった。
2: マイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。अब हम लेकर आए हैं अंश माइक के साथ पॉप संस्कृति, जिसमें आज हम बता रहे हैं प्रायोगिक पर्यटन के बारे में।
0: जापान में पर्यटक विभिन्न अनुभवों का आनंद ले सकते हैं। जैसे आज के पाठ में माइक और काइतो ने निंजा के शुरिकेन अस्त्र से निशाना लगाकर देखा।
1: आप चाहें तो निंजा या सामुराई की पोशाक पहन सकते हैं या किमोनो पहनकर देख सकते हैं, चाय समारोह में भाग ले सकते हैं और फूलों से सजावट करना या जापानी मिठाइयाँ बनाना भी सीख सकते हैं।
0: इसके अलावा भी करने के लिए बहुत कुछ है। आप खाने की चीजों के प्लास्टिक नमूने भी बनाकर देख सकते हैं। इस तरह के नमूने अक्सर रेस्तरां के बाहर सजे रहते हैं और बिल्कुल असली व्यंजन जैसे दिखते हैं।
1: और जापान में ऐसे प्रतिष्ठान भी हैं जहां आप भूकंप, मूसलाधार वर्षा, आग और सुनामी जैसी आपदाओं का कृत्रिम अनुभव लेकर आपदा तैयारी और रोकथाम के बारे में सीख सकते हैं।
0: है ना दिलचस्प? तो आप भी यहां ऐसे अनुभवों का आनंद जरूर लीजिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम और माइक मांगा कैफे जाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।
1: रेडियो जापान टोक्यो।

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। यमन की हुकूमत मुखालिफ हूसी फोर्सेस के एक आला ओहदेदार ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका हूसियों के खिलाफ सऊदी क्यादत में फौजी मुहिम में शामिल हुआ तो फौरी और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। ये इंतबाह हूसियों की जानिब से सऊदी दारुलहुकूमत रियाद के बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे पर हमले के बाद दिया गया है। हफ्ते के आखिर में होने वाले इन हमलों में 14 अफराद हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी हुए थे। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान की वजह से सऊदी हुकाम ने हवाई अड्डे की बंदिश में 17 अक्टूबर तक तोसी कर दी है। यमन की अबूरी हुकूमत के हामी सऊदी क्यादत वाले इतिहाद ने पीर के रोज ऐलान किया कि रियाज की तरफ दागे गए एक हूसी मिजाइल को फजा में रोक लिया गया। हफ्ते के रोज नामानिगारों की जानिब से पूछे जाने पर कि आया अमरीका हूसियों के खिलाफ सऊदी अरब की फौजी मुहिम में शामिल होगा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, ये हो सकता है, हम इसका जायजा लेंगे। जापान की बरकी मसनूआत साज कंपनी NEC ने मुकम्मल तौर पर मसनूई जहानत से चलने वाला एक बगैर इंसानी अमले का शोबा कायम किया है ताकि ये जांचा जा सके कि इंतजामी उमूर में इसे किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस महकमे में सरबराह शोबा से लेकर तमाम ओहदों पर 39 AI एजेंट्स तैनात हैं जिन्हें उनके मुकरर का किरदार के मुताबिक नाम दिए गए हैं। AI कारकुनान रिपोर्टें तैयार करते हैं और मालूमात इकट्ठा करके हतमी फैसले करने वालों की मदद करते हैं। इसमें मालियात का तजिया करने के लिए माहाना फरोख्त का जायजा लेना शामिल है। वो पुराने रिकॉर्ड से ये हिसाब लगाते हैं कि ग्राहकों को अगली बार अपना सिस्टम अपडेट करने की ज़रूरत कब होगी और इसके मुताबिक वो वक्त से पहले ही ग्राहकों की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। AI अमला हर सुबह हरीफ कंपनियों से मुतालिक खबरें भी चेक करता है। ये शोबा अहदाफ पर पेशरफ्त को जांचने और मुस्तकबिल के चैलेंजों का खुलासा करने के लिए हफ्ते में एक बार आला इंतजामी इजलास मुनक़िद करता है। NEC के हुकाम का कहना है कि एक AI मुलाजिम ने नंबर दर्ज करने में गलती होने के बाद एक AI अफिसर ने उसका इंटरव्यू किया ताकि ऐसी गलती दोबारा होने से रोकने के इकदाम पर बात की जा सके। कंपनी के हुकाम का कहना है कि वो AI अमले के किरदार को बढ़ाना चाहते हैं और इस साल शोबे में सैकड़ों AI एजेंट्स शामिल करेंगे। मिस्र के उन स्कूलों में जापानी जबान की क्लासें शुरू हो गई हैं जिन्होंने जापानी तर्ज तालीम के तरीकों को अपनाया है। मिस्र में ऐसे सरकारी स्कूल मौजूद हैं जहां बच्चे सफाई, जमाती इजलासों, बारी बारी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां निभाने समेत दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं जो जापानी स्कूलों में आम हैं। इस मुल्क ने तालीमी इस्लाहात के एक हिस्से के तौर पर 2018 से अब तक ऐसे 100 से ज्यादा मिस्र जापान स्कूल कायम किए हैं जिनमें नज्म व ज़ब्त और बाहमी तआवुन पर जोर दिया जाता है। कुछ वालदेन की दरख्वास्तों के बाद सितंबर में 10 स्कूलों में आजमाइशी बुनियादों पर जापानी जबान की क्लासों का आगाज हुआ। पीर को जापानी ज़राए इब्लाग को शुमाली मिस्र के शहर स्वीस के एक स्कूल में 7वीं जमात के तलबा की पढ़ाई का मुशाहिदा करने के लिए मदऊ किया गया। तलबा ने जापानी जबान के मिस्री उस्ताद के साथ गाने के जरिए जापानी जबान में 1 से 10 तक गिनती की मशक की। उन्होंने जापानी जबान में अपना तारुफ कराने का तरीका भी सीखा। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।